0: 우침 선거 상징 그어다 토르기 그런 거죠. 우침 선거 상징 그어다 다치스권으로 민코민장고라 뛰는 거 선거 상징 어 동원으로 뭐 되게 강수 숙니자 나타르제 토르기 로브정 누아요. 스글라킨도 냥가 뭐 되게 도면 어초 아니 키노 샤도 만나 페이지 글람 간도로 양 조조시가 양게야.
1: 제제 어 다통 마르통 냄튼 테니데 용요.
0: 어초 다른데 용일로 우제모. 로브존데 용고네 양 로레 로레 고추 용고도 통지 키롱 노라 양 용의적 냠냠 제스고 노라 양네 샘친난 젠디 노도 만자고 뭐 로용단 로만자고
1: 아따 다루타 선기나 안젬튼테네 식는도 그게 초른게 반디치 체히데 거래
0: 아 고추 쇼 고춘도 뭐고 카트 쳔무즈가 용의적 반디치 체히데다 치니 랑게 통지인도 시조 아 쳔즈고노 셔츠메트고 아니니 ཤར་ཚོང་ ཐམ་ནམ་ མ་ཚལ་ དར་ང་རེ་ སམ་ཅན་ ཁ་བཅིག་ ཡིན་ཐེ་ཟེ་ཡེ་ཐབ་ཁ ཁསམ་ནི་ དང་ང་ཅུན་དེ ཡང་ ཁེལི་ པ་ཚན་ནེ་དེ ཡོང་ནོང་དོ་ ཁེལི་ རིག་འདྲ་མང་གང་ ཐོན་ལི་ དང་ ཇ་བི་ ཁེལི་ཡང་མང་ཡོང་ ཁོམ་ཏ་ ཆོ་ཏ་ཉམ་ཏ ཉམ་ཉོ་ ཇེ་རི་ ཡོང་ན་ ལོབ་ཅང་ ཡོང་མན་ དེ་ཆུ་ ལག་ཅ་མང་ཨ་ཟ ང་ཅུ ང་ཅུ ཤན་ཅ་མང་ཨ་ཟ དེ་ཆུ ལག་ཅ་མང་ཨ་ཟ ཉ་ ཁོ་ཤུ ཇེ་རི་ ཆུ་གོ ལོབ་ཅང་ ཡེ་ཇུ་ གོར་ཁོ མང་ཨ་ཟ གོ ཁོམ་
1: ཨ་ཟེ ལོབ་ཏ་ ཆེ་མུ ངེ་ཏན་ནི་ ཐར་ཤན་ནི་ ཤ་ར་ ཡོང་ར་ཏ་ ཁོ་ཁ་ ཡེ་ཏོར་ ཏེ་ཁེན་ ཇར་མོ
0: ཨ་རེ་ ངེ་ངུ་ཟོ ཁ་ཡ ཏོར་ ཏེ་ཁ་ཤ
1: ᱡᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡᱤ ᱡᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱤᱨᱠᱩᱨᱮ ᱭᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱣᱟᱨᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱫᱟ ᱭᱚᱠ
0: ᱜᱟᱫᱟ ᱢᱮᱠ ᱜᱟᱫᱟ ᱢᱮᱠ ᱥᱚᱨᱚᱝ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱨᱟ ᱨᱚᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱᱟ ᱛᱩᱠ ᱟᱝᱟ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱ ᱟᱝᱜᱚᱡᱤ ᱱᱚᱜᱩᱱᱤ ᱠᱟᱵᱩᱡ ᱠᱮᱭᱟ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱ ᱜᱞᱤᱨᱜᱚ ᱥᱟᱨᱯᱤᱠ ᱫᱤ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱪᱤᱥ ᱜᱞᱤᱨ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱞᱤᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱚ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱡᱚᱝᱪᱮ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱚᱠᱨᱮᱭᱟ ᱚᱱᱡᱚᱝ ᱛᱚᱛᱚᱝ ᱢᱮᱱᱡᱟ ᱥᱟᱡᱩᱱ ᱪᱷᱟᱛᱷᱩᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱛᱷᱩᱠᱚ ᱪᱷᱟᱛᱷᱟᱵ ᱫᱮ ᱡᱟᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱷᱩᱠᱚ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱚᱪᱷᱤᱨᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱞᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱠᱠᱚᱨ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷ ᱯᱤᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱡᱮᱱᱠᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱢᱟ ᱮᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱢᱟᱞᱟᱥ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱠᱟᱠ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱪᱷᱟᱠᱱ ᱫᱩᱠᱟ
1: ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱪᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱚᱝ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱮᱣᱚᱱ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱪᱷᱤᱛᱤᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱮᱛᱮᱱ ᱫᱚᱥᱚᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱥᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱚᱠ ᱥᱟᱢᱠᱤᱞᱚᱠ
0: ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱚᱪᱩ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱠᱩᱱᱚ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱭᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝ ᱟᱡᱚᱠ ᱛᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱚᱪᱩ ᱭᱚᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱠᱩᱱᱤ ᱞᱟᱠᱮ ᱫᱟᱨᱚᱝ ᱪᱤᱠ ᱛᱚᱝᱜ ᱢᱮᱱᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱝᱜ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱚᱪᱩ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱠᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱠᱮᱞᱤ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱧᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚ ᱢᱚᱡ ᱛᱚᱜᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱪᱮᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱚᱨᱥ ᱫᱤ ᱥᱟᱢᱱᱚᱱ ᱛᱮᱵ ᱠᱚᱢᱚ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱜᱤᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱚᱪᱩ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱥᱮᱱᱡᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱡᱢᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱤᱛᱮᱨ ᱠᱟ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱝᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱱᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱢᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱟᱜᱛᱟᱭ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱢᱟᱨᱠ ᱢᱚ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱢᱚ ᱛᱚᱜᱮᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱡᱮ ᱛᱩᱨᱡᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱮᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱤᱛᱮ ᱪᱮᱠ
1: ᱵᱟᱨᱮ ᱠᱤᱥᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮᱱᱟ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱮᱛᱱᱤ ᱜᱟᱯᱪᱤᱨ ᱥᱢᱩ ᱤᱭᱚᱱ
0: ᱢᱚᱪᱚ ᱠᱚᱱᱥᱟᱢ ᱥᱚᱝᱜᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱪᱤᱨ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱮᱵ ᱠᱚ ᱫᱚᱱᱚᱨ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱠᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜ ᱡᱚᱵᱡᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱠᱭᱚ ᱞᱟᱠᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱤᱜᱡᱚᱜ ᱥᱚᱨᱯᱤ ᱠᱤᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱭ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱛᱟᱢ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱚ ᱫᱟᱡ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚ ᱨᱩᱠᱪᱤᱨ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱱᱞᱤᱠ ᱠᱚ ᱨᱩᱠᱪᱤᱨ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱝᱜ ᱠᱚ ᱨᱩᱠᱪᱤᱨ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱞᱤᱜᱡᱮ ᱜᱟ ᱠᱟᱭ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱨᱩᱠᱪᱤᱨ ᱢᱟᱝᱟ ᱤᱱᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱡᱚ ᱜᱮᱱᱟ ᱜᱚ ᱪᱚᱛᱟᱣᱨᱚ ᱭᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱡᱚᱨᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱚ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱚᱨᱡᱟ ᱚᱱᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱨᱡᱟ ᱛᱚ ᱜᱚ ᱥᱟᱜᱱᱤᱨᱟ ᱡᱚᱨᱡᱟ ᱛᱚ ᱜᱚ ᱫᱟᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚᱱ ᱡᱟᱞᱜ ᱭᱚᱥᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱚᱭᱟᱝ ᱥᱟᱜᱡᱚᱱ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱨᱩᱠᱪᱤᱨ ᱤᱡᱜᱮ ᱜᱚᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱟ ᱵᱟᱡᱨ ᱢᱚ
1: ᱨᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱮᱥᱩ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱟᱱᱭᱟᱨᱤ ᱞᱩᱪᱷᱢᱩᱡ ᱜᱚᱨᱥᱚᱥ
0: ᱢᱚᱪᱷᱚ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱩᱨᱟᱝ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱱᱭᱟᱨᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱚ ᱫᱚᱥᱠᱨᱟ ᱞᱚ ᱡᱮᱢᱚᱨ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱚᱨᱱᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱫᱚᱢᱚᱱᱟ ᱵᱟᱥᱠᱤ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱞᱟ ᱛᱮᱱᱚᱱᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱞᱚᱥᱠ ᱭᱚᱝᱜᱚᱛᱟ ᱪᱷᱢᱩᱡ
0: ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱠᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱚ ᱞᱤᱜᱱᱤᱨᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱱᱤ ᱜᱚᱨᱚᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤᱨᱛᱚᱱ ᱱᱤᱠᱷᱥᱟᱨᱱ ᱜᱟᱜᱞᱚ ᱪᱷᱟᱨᱜᱚᱵ ᱜᱮᱨᱟ ᱫᱟᱱᱪ ᱛᱚᱝᱡ ᱨᱮᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱥᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟᱨᱛᱚᱝᱡ ᱜᱟ ᱜᱟᱡᱚ ᱜᱩᱛᱚᱢᱚ ᱢᱤᱢᱵᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱥ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱥᱟᱱ ᱫᱮᱛᱮᱱ ᱫᱟᱞᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱴᱟ ᱥᱮᱢᱩ ᱜᱮ ᱫᱮᱥᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱦᱟᱞᱢ ᱛᱟᱠᱷᱪᱚᱥ ᱥᱮᱢᱩᱡ ᱜᱮᱢ
0: ᱢᱚᱪᱷᱩ ᱞᱤᱥᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱚᱥᱞ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱩ ᱨᱚᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱚᱞᱦᱚᱵᱪᱷᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱟᱫᱟᱜ ᱪᱩᱜᱢᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱱᱩᱠᱷᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱠᱥᱟᱨ ᱜᱤᱞᱟᱡ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱞᱤᱡ ᱛᱟᱠᱷᱪᱚᱥᱭᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱠ ᱪᱟᱨᱤ ᱛᱚᱵᱡᱟᱞᱚ ᱚᱪᱷᱤᱨ ᱢᱟᱣᱟᱱ ᱢᱚᱪᱷᱩ ᱛᱟᱨᱩᱝᱨᱟ ᱫᱤᱜᱟᱨᱠᱩᱴᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱟ ᱠᱤᱞᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱛᱚᱠᱤ ᱞᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱷᱪᱚ ᱛᱟᱠᱢᱚ Tani nga chu di chakni kaan chonki na yang uchi njokka ga njoklugra nor nukla ka na da gendan uchi yuna kochulik meno go hosi ra nyang ra tani norku uchi ra tajam go to uchi li dali jaga ta thonzi jang ka tango nro mo to gyan nga kari jaga ta to yang gyan nga da tawar gyan nga nyamang azi ka ta kera milo nga suyi jaga to shayi ujin da xe guna ta mo nambaz la to gada ti sa gyo tera ya xe ga yang jiga zi ga chasa guna ra uchi mthorga nga xe ga matra yo no go tsangmai no go thonzi di gyashan do uchi li jaga ta kera milo ga sa gyo to li go kumo Тогда ночью хосира лукрнёра норк учёра томота янга кёрдон дечу тосмо жыры тадага тонзи томо жердон жыры та керамилог сажу тонзи тев жыры жыры кек донор тогда ночью тусу нано доска тилик донор мо жыку томозга да ночью рынг тати тончи на чугно ги гелон да жыры ночью рынг там сонгни тадага зорча тиги жыры керамилог сажу ли то лики сакомо тусу жоглук дааджиг хоси сергимек карнян сергимек таништи сергимек норнок укчук сергимек тажангу дэвчэтэнэ укчун жука мангцокко гендэнг кочой тэкмэни томо мазга арын тажанг гэр тэкмо
1: перэнгэ чанты тэнэ но тишишишго
0: а чомэ гэргэм гэрэн чэчэ
1: я демо
0: я демо демо
1: я чо демо
2: я демо демо
1: अरे तातुन चचु सोपसन डेमखन नि चचु कंसा खिलेवा नमाग तोंजि छिलकेरोजो
2: तासन जिन नचु कंसा चिनखुइन जिन तोंजि सोउन रनु ता जिग स्काम खास कुन रे खामो सेरु गति लग सर तक ता दांगु खारकम दारंग उचु लहम ग ता जिग मार छरा स्टाम बालास को ता दिशोरा दांगु जुर किरक अले देरता को काजे दिसुक ता जिग तोंजि ग नाकास ग जसक दमज किरक
1: रे कार्टन तेर शर्तों नु गने से छम छ
2: नि तु लख छ गे छागे दा तिना यासि ग छ छ जा छ ब मा यों ए दा लेस को न रे गप से छम तो क दा जो तो मस छ
1: रे छ छ कोन से न रे न्याम ले खन
2: आ कोन से छ
1: रे छ छ कोन से न ने तयो
2: न तावरे इन जना सम छ लख तमो छ ता
1: न न ले का सो छ छ ले गन
2: जो उन रन दो से कोन दांग छ दि आ ना कन रन दो छु ज ग त मो ग ग कर ओक ता ते तंग न ता छ ग आ दा थोन जि ग र ग ली नो रा या छ ग शेप जग नो ति या र ख न दो त मो आ तम नि दांग ज म बा इन ज ना दा छ ग छोंग ली ग सु ग ते या म र जि ग नो दा ख छ ग न दो त मो छ छ ग ओक ता
1: रे ता छु रंग गि ते ना दा थंग ग दे यो नो ग तो न्यो सु छ ज र सम ग
2: तो इन ज ना दा दि ग द मो आ ग छु According to the Chambers, I think it's something that I'm going to do. I'm going to do something. Da tsongchina namo ga tsokchin ga laka sona lokki chik shaa na tamusikshi.
1: Re, kyu nanga chazgi?
2: A, nga nanga libzo azat.
1: Kyu nyanga chazgi?
2: Nga nyanga chakshim jasir.
1: Da kishu kongsi nga na tabarishiga nyerno nga tani mawa aga pekingin danjongda kisal na shimuzir samka?
2: Mawa nga nga chugu tuanzin da jirgi jelaga tangay, jesha tangay tangay da shangchina shanang ayina chukka da agi kargi, kargi chenbu nga chen jojyu dere wa kata. Zogu tamusikshi.
1: रे चचु कोनसेना सानी रंग निनहाग लिनो इनरेला
2: रे रे न चसानी ग रंग लिनो छ
1: नाम ने ओली लिंगो साम
2: न निस्तों निस्तम ने ओली लिंगो साम
1: ता चचु लिजो रे रे तवर लापुक ने थने छ मोतेर गन
2: लापुक ने थने इन जना तों आ ग गाट क वर्त मो छता
1: रे तगे मै चुरंग यिल सम गोक
2: यत सम गोक ati la ka sokke rang ka tsong dilak en jena sokke shalai gun shalai tang sgun der jeji jela ga tsong na dil sokke ra yang chi kap sgun ten na ka ne chi bab ji to mo zo chi sta ten ra ji ma
1: je je ten na terang len sing gup chan de tang le no thi ji chi
2: ya kwa den che kwa chi
3: re du ba na ba terang len sin di na nga su en jena sonum dem khil ta ti han shi ka sob sing dem khil de song da tang ta sonum sa khil tang ni them sin sa khil ta ni en jena sob sing sa khil da ga sa ne rang ga kya shi da nu ga thon zi mang pu zi dem tu yin nu ga ni chil te na ar gilun zi gin re ta ar gilun yir yong na tar ta ta chung sub tar pil ga sa shin da rang yin bu shi pa tang ta ni ar gya shin du ga mang su kha ta wu sun gin na ra ta sa ni ga kya shi da mi thon zi mang pu zi sa chun yi ko nu su ga ta terang ga len 랜슨디 나식 누구 소프트 쳔모 멍 체키즈 시 렁거 파일 나온다 했더니 파일 그 멍멍 망소라

0: 야데나 와컴디 리슨 타통 컨터 냥큰 쪽부 그니가 카브르탄 도거든 나치 쪽본데 니 카브르 리슨 닐렌지엔 야 쪽부디모
1: 왜
0: 아디모
1: 오냐 디모 인초 디모 이나
0: 아디모 디모
1: 오케 된 질린트 지마 나 무드브 도미 돈인 데 코디 나마가
0: 네트브 도마 그 돈인 즈 그래세
1: 레레레 베르레 요나
0: 네트브 도마 या कोथा
1: नसरे अद कोटिक जॉब का देंगे
0: या कोथा कब जी मिले सना कोटिक ला दिमु
1: ओया ओया
0: या टको दिमु
2: तेरी तेरे देमो ना
0: देमो देमो
2: अरे
0: इंदु मो गलों नो हं जीसु चमा मदा गे से ने मंगले जिंगो
2: ओ या या मंगले तो इंदु मो मंगले तो अच्छो रे तेरो गोमा छत्ती वा छसन दो सो ये लिकों सो सो गो गोम गोम बा युमा
0: रे ये कोटे छे या या
2: अरे तमी न्यान थु यो यान थु कोने ये दे दोदो गो तांचुया दे पेचागे जासे नामजिल सचंगो नावाग फंदु तसम बयम चपनयन
0: कोता कोता
2: तुजिमो मंगा का दे प्रमो दोमाग तेग तेग गुमान जस को लयम तचु मखतमा
0: प्रमो दोमाग
2: अले प्रमो दोमाग काजिन गो
0: ओरे प्रमो दोमाग सेर्ग
2: ओले ओले सेर्ग
0: नरे सिग सिग गुमाजु तरा
2: ओले ओले
0: सिग सिग गुमाजु या तना कब्जि मिलिस ना कोटगला
2: ओ या या या कतन छे
0: या देमो
2: या देमो

0: उपचार तो ना देना चुको ते चीज नो पाम मारी मत जो ते यहाँ चीज चारे जो मुतम उतरे ते की ना ता अंडी ता था उन ते चीज सुई चीज ऐसी तो नो ता नाम तो चंदे नची यंग सागनी नी शेची की तो नगनी के चार तम जो कुमो
1: रे
0: ते की तो ना ता संग चौतुन ते चुका नची यहाँ चीज निश्चित रहते मार तो ना तो नी पैतंगे ता संग चौतुन दे इंगी ना अचु तो चक सोरंग शांचिंग गंदी सुशुल लिखुंग ग नर मासुम भी मग चंदन सोच बरा अंदी नगनी होंगुक कर गई अंदी खुश तुन चेंग